0: मम्मी गर्मी भाई के ची सो पियो ना
1: पियो ना लाई चिसो उठाओ हॉले
2: हॉले गर्मी मनाया
1: रिफ्रेशमेंट पा न्यूट्रिशन मीट
2: चिसो हॉले।

0: वात्सल्य पोखरा क्लिनिक न्यू रोड पोखरा फर्टिलिटी होप लाइन 01-597-06-11
1: ओहो नासर बे कति छाब डिजाइन बे मारे गना खिनानी खनि तोला
2: खनाई बेवा नासर बे रूपाकोट ज्योति सुनचाती दुकान महेंद्र पुलाडी तोला
1: ए नै साबा मार दुकान पो मोना नै प्रेसलाई नि चार बचुरा रैया औठी हमेला झोका टस सिग्री हार तान चनै तो हो नि जग मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिसानारी बेल्ले छाब कोपिन ओछे
2: हजुर किने झोको लाई नि छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना सैदी म बिसा वा चुवल तुई बिसा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खोऊ जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिखी चोकै यावै चार मोहै
1: जग मात्र आङी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: समुदाय रवा ताक रिवा ज्याला जाति कृवा छतैरा न त खैमा बिलन चन्न यामो
1: तोय मिल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-5808-15 98-5-60-35-8-15 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छतैरा त तान नि भिम्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउ है रूपाकोट।

0: Pareto akie nagari pokhra ma Metro City Hospital prali sirjana chok pokhra le bibhinna kisim ka bisheshagya chikitsak sewar ko upachar lyaeko jankari garaudachhau.
1: Hamra sewa haru
0: heart jodni nasa tatha merudanda rog
1: general surgery sabai prakar ka operation sewa
0: mirgaula tatha mutra rog uro surgery
1: pet chhati mutu thyroid tatha madhumeha rog
0: neuro surgery sewa
1: bal rog
0: nak kan tatha ghati rog
1: manasik tatha snayu rog
0: prasuti tatha स्त्री रोग
1: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
0: नेत्र रोग
1: दाँत तथा मुख रोग
0: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू अत्याधुनिक माइक्रो डिभाइडर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाँटी रोगको अपरेशन मासिक नियमित खोप सेवा
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्स इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
0: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
1: डिजिटल एक्सरे
0: सिटी स्क्यान सेवा
1: भिडियो एक्सरे इकोकार्डियोग्राफी
0: इन्डोस्कोपी ईसीजी ईईजी पीटीए
1: फिजियोथेरापी युरोफ्लोमेट्री
0: केमोथेरापी
1: सुरक्षित गर्भपतन सेवा
0: होल बडी चेकअप हेल्थ प्याकेज
1: मेट्रो सिटी हस्पिटल प्राली पोखरा 8 सृजना चोक कास्की
0: फोन 061 572 648 572 849